मैं यहां नमक वेनस का दावा कर, ये अलग बात है। हम दाम हम और मति बनो दिया का दावा करने में मैं वेनस का दावा कर, और हम आगे लंग एक ऐतक क्या मति नागी इन्हें आगे लहितन, और हम लंग एक ऐतक नहीं सामने, ये अलग बात है। ना प्रियाविया

सुबह मंदारम राग वैवाद्रनी तरंगा का मंदन नहीं है मुने ज्ञान या हिटिए हेल्ले वैन्ने वत नेतुआ या मागे उकुलटे वेला इन्नो अंत में टे मांगे अस्ते के दाकित्ती ये अस्वेलिंग की अन्न नेते तब चुट्टक दुरक क्यां किया ला मगे तो मांग वाचने की वत किसी में देख कांग वाला थी बने ऐत समार विट एक अहम वैन्ने थी यहाँ रिलासन टी ना होना खामोलटे ताटुक दाल मांग के वहम दाम हिना वेला इन्न केला वितराय इधर इन पासे मांग आदमी ने कल ही तो ना समार अहम बकार कहेंगी सदा कालिक वो मिहिते थी दिन केला वन साइड लव प्रेम के अन्य किने को आयत कर गयी मन नवे ओगे हो आएगे हिना हवते हेतु अक्वेन कांडले के टेसने सीमा क्वेन तुरीन हिटिया था दवते लंगम तनु रहन्दी इन्न निहान प्रार्थना वाक समय प्रेम है कवदावत काले में याने ने एम्मत के अपुनत एम्मत के हदवतर टे जीविते पुराम मासुं दाखवागे रहन्दी थी ना ऐम के याने लरंगना महामुवी मग मलासनाई कोंदे पाने थी ने गैनो पिरमी हम्बुनाम कोहे दोली अलती ये ना मांदेका आदरे हिस्तन तिब्बा मा यकुरिंगे ना वालो एक युवित कालु कुमार या ऐस वाकट वाहना हिस्तन तिबुन्ना आदरे अडून्ना अपी अपी ओ अपी टापी ना तिवेन्ना अपी द तिब्बना माल हाथ दागेन रणपुरु बैंदेगेन राज्य कुमार एको गी पातिनी अवेन अवसान हीने ये रे मंदेका नावलिन सची